0: मुख्तार जी, कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज शनिचर शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन शुभ वीकेंड बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। बस आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा में और चले भजन यात्रा प्रोग्राम में। पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों के लिए और

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226666 है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226666 11 भजन जो

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पंडित जय शंकर जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आपने सुना। चले आपकी बार एक सुंदर राम जी का भजन पेश किया जा रहा है और होगा प्रोग्राम में खासतौर पर अशोक घरे की आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले सुंदर भजन जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आज की इस शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में, प्रोग्राम भजन यात्रा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए सुनने वालों, हम आपको ले चलते हैं अब की बार खास तौर पर श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों की सेवा में श्री हनुमान चालीसा बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर सुनते ही रहना।

0: और रेडियो SBS के जरिए सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं बजरंग बाण की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।
1: रुद्रावतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

सुंदर सा बजरंग बान बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ और शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई एक फिल्म जिसमें दिलीप कुमार और विजयंती माला ने काम किया, गंगा जमुना फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई 1961 का फिल्म 1961 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले शमशाद बेगम की ओर और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म मॉडर्न इंडिया की ओर।

रेडियो SBS की सर ये पुरानी फिल्म बॉर्डर इंडिया उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने सुना। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अब की बार फिल्म राम और श्याम की ओर मोहम्मद रफी और आशा प्रोग्राम में।

दौर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में, बस पेश किया जा रहा है जरूर और जरूर सुनते ही रहना फिल्म लव इन टोक्यो। उसी फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना लाया गया है, मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो तो ऐसा हो। लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी लव इन टोक्यो।

लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शेडुट्रेक से हॉलैंडी से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश और लता मंगेशकर।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल फोन के जरिए, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले फिल्म नागिन की ओर। स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, ओ जिंदगी के देने वाले।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस पीस की गई पुरानी फिल्म नागिन का गीत अभी आपने सुना। रेडियो SBS की सीरिये आज की ये प्रोग्राम में ये गाना हेमंत कुमार की आवाज में पेश हुआ है। महेंद्र कपूर और आशा प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में अब की बार ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। गुमराह फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए गुमराह फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में जो पेश की गए हैं। अब की बार हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता मंगेशकर की ओर। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम कभी कभी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म कभी कभी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की ओर। फिल्म का नाम दुल्हा दुल्हन, उसी फिल्म का अपनी बार ये गाना पेश किया जाए।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में दुल्हा दुल्हन फिल्म का नाम चले अब की बार मन्ना डे की ओर। और मन्ना डे

मन्ना डे और गीता दत्त की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जहरीला इंसान, फिल्म जहरीला इंसान उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई जहरीला इंसान फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम है जंजीर।

रेडियो SBS की जरिए एड फिल्म ये वादा रहा उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म यकीन की ओर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। लता के बाद चले द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

एंड फिल्म यहूदी मुकेश जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा रहा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले आज की प्रोग्राम में फिर से लता जी की ओर हम आप भूले चलते हैं।

मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। सुनो वालों, चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है उमराव।

गाना आशा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पीसीजे रेडियो एसबीएस की जरिए Sunnevallo Studio का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60

सभी सुनने वालों की सेवा भी आसरो मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में एक गाना है की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और

परमेश्वरी मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपके बार ये गाना पेश किया जा रहा है

film Dhadkan. उदित नारायण और अलका साथ ही साथ कुमार सानू जे की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम धड़कन, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-226-6611।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में प्रेम अगन फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।

फिल्म का नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी अलका जी की आवाज में। अलका जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम सोल्जर।

सरीचर शनिवार का दिन है और यहाँ से लोकल टाइम का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और लोकल टाइम का प्रोग्राम तकरीबन 2 बजे तक जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। उमर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: है।
1: रेडियो SBS के जरिए उमर के आवास में ये गाना बस पेश की गई, आश्रो भी देखिए, गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुन

0: रेडियो SBS की। सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की सर ये जो पेश की गए शनिवार का दिन लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 030-262-6611। चले प्रोग्राम में लक्की सिंह की ओर।
1: कल रास्ते में गम मिल गया था, लक्की गले में रो दिया।
0: सेशन सेस्तक हेल्फ। चले प्रोग्राम में लक्की सिंह की ओर।

में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

गाना बस प्रोग्राम भी है पीस की गए आसरों भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार मीका सुखो की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

आसरों मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए हैं। चलिए अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा करता हूं कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में चले मिलकर ये गाना।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, खासतौर पर मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार उमर की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में शेखर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

और रेडियो वेस भी इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। चलिए अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

तकरीबन 2 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी शुगा चले मुख्य इस प्रोग्राम में। रेडियो SBS Vanuit het mooiste stad van Nederland, Utrechtse Hertse Salose, ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का फुल डिजिटल स्टूडियो से

सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले बॉब माली मिक्स की ओर।

रेडियो SBS के जरिए बॉब माली मिक्स आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-266-6611। चले प्रोग्राम में मिस्टर राहुल थी

रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में संजय की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: रहे न रहे चाहे हम और तुम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से सचिन की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये गाना पेश किया जा रहा है, चुम्मा दे देना।
1: अरे दिल जानी मुझको।

सुन वालों आहिस्ता आहिस्ता लोकल टाइम का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। तकरीबन 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा और लोकल टाइम का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी तकरीबन 2 बजे तक।

इसकी गई आप सभी सुनवालों की सेवा में। सुनवालों एक आखिरी गाना आज की लोकल टाइम की प्रोग्राम में पेश किया जाएगी और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनवालों से बस फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। अभी न्यूज और मौसमी समाचार के बाद RJ आंशलिक के जरिए बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी। मैं आप सभी सुनने वालों से कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलूंगा। मैं था आपका खिदमत गुजार अबीन। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड और हमारा आज का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 8 बजे भजन यात्रा।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली क्रमलाल, दी उफा हार्ट वेलकम हीट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। विल तू रिएक्शन कर दो टेड सर्फ नाद वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल नाद स्टूडियो मेट 032-62-66-11। Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

मुझे रंग दे, इसको सुनो तो राशा भोसले एंकवा मैं फिल्म तक्षक एंड आउट द एल्बम दुनिया जिसे कहते हैं कम तो सुनो दो जगजीत सिंह कल 14वीं की रात थी।

जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह में कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राख्त लीजिए सुसों दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुसों दो जगजीत सिंह एंड कम दे सकेर आई द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना. इसके साथ दोस्त सलमा आगा है बप्पी लहरी. En het volgende liedje in het programma Gietong Keleher is gezongen door Kamal Khan. Uit de film Jinni Wet Seni komt Roeberoe.

आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और अब आप सुनिए एक पहेली लीला से तुलसी कुमार की आवाज में, मेरे सैया सुपरस्टार।

छोटे मिया लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑप हेट पोडियम बिलीव एन अनवर्गेटलिके अवंड वोल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फन टॉप निवो रुक जाओ दिल दीवाने सोंदाग 15 नवंबर सोंदाग 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय RTM स्टेज 2 जनरेशंस 1 पोडियम एन अनवर्गेटलिके अवंड मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहा।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

फिल्म बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से। और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं।

शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया ये सच है प्यार द रीमेक्स।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।